0: का क्या बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बता दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

तो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भात कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे। फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई।